0: गर्ने एउटा थाक्ने जहान दिनभरि तिमीले के गरेर बस्थ्यौ हँ? तीन दिन भयो कपडा धुन दिएको, आज पनि त्यसै असरल छन्।
1: मैले काम गरेको तपाईँले कहिले पो देख्नु भएको छ र?
2: के को छलफल हो दाई बाबुजू? दुवैजना थकित पनि देखिनुहुन्छ।
1: हेर्नुहोस् न बाबु, हुन त घरका कुरा नभने पनि हुने हो। बिहान उठेदेखि घरको सरसफाई, चिया, नास्ता, खाना, बच्चालाई स्कूल, दाईलाई अफिस, भाँडा भान्सा, करेसा बारीको काम, एक मिनट फुर्सद छैन। तर दाईले मेरो कामै देख्नुहुन्न।
2: हुन त हो, घरका काम कति हुन्छन् कति गणना गरी साध्य छैन। अफिसको एकरो काम भन्दा त घरका काम धेरै गाह्रो छ। आफूले गर्न परे पो थाहा हुन्छ, नगरेकालाई कसरी थाहा होस्।
0: ओहो भाइ, आज तिमीले साँच्चै मेरो आँखा खोलिदियौ। घरमा कम काम हुन्छ म बल्ल बुझे भाइ।
3: एकअर्काको कामको सम्मान गरौ, समाज परिवर्तनमा अग्रसर बनौ।
4: त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त यस क्षेत्रकै गरिमामय शैक्षिक प्रतिष्ठान न्यू लाइट कलेजमा चार वर्षे बीबीएस र बीएड मा भर्ना खुल्यो।
5: दक्ष अनुभवी योग्य प्राध्यापकबाट अध्यापन हुने शान्त रमणीय वातावरणमा यातायात पुस्तकालयको समुचित व्यवस्था सहित न्यू लाइट कलेज सिलोतमा एक शङ्करनगरमा बीबीएस र बीएडको प्रथम वर्षमा भर्ना खुल्यो।
4: सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थीलाई 100% छुट तथा छात्रालाई भर्नामा 50% छुट।
5: सिट सीमित छ, छिटो सम्पर्क गर्नुहोला।
4: सम्पर्क न्यू लाइट कलेज तिलोत्तमा एक शङ्करनगर रूपन्देही। फोन 071-414-268, मोबाइल 98-570-34-520।
6: अब सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ सेवाहरूको लागि सनराइज इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट।
7: हाम्रा सेवाहरू
6: आधुनिक भवनको नक्सा डिजाइन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने,
7: बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीको लागि घर जग्गा तथा सवारी साधनको मूल्याङ्कन गर्ने,
6: विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको लागि भित्र मूल्याङ्कन गर्ने,
7: घरेलु कार्यालयको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदन तयार गर्ने।
6: सनराइज इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी, रेडियो लुम्बिनीको भवन, मणिग्राम रूपन्देही,
8: शाखा कार्यालय तिलोत्तमा नगरपालिकाको अगाडि।
9: सम्पर्क 98-570-24-344, 98-570-35-227 र 98-570-73-220।
10: बुटोल भैरहवाको बीच मणिग्राममा स्तरीय क्लिनिक नीता पोली क्लिनिक प्रणाली।
0: हाम्रा सेवाहरू
10: जनरल फिजिसियन,
0: स्त्री तथा प्रसुति,
10: बाल रोग,
0: छाला तथा यौन रोग,
10: हाड जोड्ने नसा तथा बाथ रोग,
0: टाउको तथा मनोरोग,
10: नाक कान घाँटी,
0: जनरल सर्जरी,
10: भिडियो एक्सरे,
0: डिजिटल एक्सरे,
10: ईसीजी,
0: डेन्टल तथा प्याथोलोजी,
10: फिजियोथेरापी
0: तथा फार्मेसी सेवाहरू उपलब्ध छन्।
11: किशोर किशोरी, युवाहरू र 15-49 वर्षसम्म को महिलाहरूलाई अस्थायी परिवार योजनाको साधन, लामो समयको साधनमा कपर्टी र इम्प्लान्ट सेवाहरू उपलब्ध रहेको छ।
12: गुणस्तरीय सेवामा विगत लामो समयदेखि प्रतिबद्ध
4: नीता पोलिक्लिनिक प्राली, तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही, रेडियो लुम्बिनीको ठ्याक्कै अगाडि। फोन नम्बर 071-562-832, मोबाइल
5: 98-570-21-835।
13: नमस्कार हो नमस्कार नाई, ई बुढ़ौती में बुढ़ा बुढ़ी का बात कहल जाता? अका होई डॉक्टर नी बहनी, बड़की पतोहिया दुई जीव के भइल भाई, ओकरे देख रेख के जोगाड़ खोजल जात बा। आहा, ई होखे न तरीका सास ससुर के? हाँ, तब का पेट में बच्चा रहले के बाद 2 वर्ष के जब तक नाई हो जाले, ई 1000 दिन में अम्मा और बच्चा के पोषण युक्त खाना खियाए के चाही और सर सफाई के बारे में ख्याल कइल जाला, तब बच्चा और अम्मा के दोनों जनी के स्वास्थ्य ठीक रही।
14: देखा, पाथर खोजत के भगवाने मिले जैसन होई गईल, और का करे पड़ाला डॉक्टराइन बहिनी तनी बता दत।
13: ठीक बा, सुनल जाए रेडियो में लगातार बाजत बा।
3: गोस मछली अंडा सबसे बढ़िया बा, गोस मछली अंडा सबसे बढ़िया बा,
13: फल फूल और साग पात बच्चा के खाना साथ साथ
14: सब मिल के खियावल जाए,
13: कमती में 2 साल तक महतारी के दूध न छोड़ावल जाए, बच्चा चालाक और निरोगी बनावल जाए। हाँ, हम ते बच्चा के स्वास्थ्य बनावे के संति 6 महीना पूरा भइले के बाद अम्मा के दूध के साथ सक भर ते घर के ताजा और तरकारी, अंडा, मछरी, गोश, हरियर साग पात और पियर जात के फल फूल खियावेली।
14: ओकरे साथ साथ गर्भवती मेहरारू के रोज रोज जितना खियावल जात रहल गे उसे एक जगह बेची दिहल जाए और बच्चा के महतारी के जितना देत रहल गे रोज उसे दुई जगह बेची देवल जाए।
13: लेकिन ये सब खियाए वाला चीज और तैयार करे के खियावे के समय में सर सफाई में ठीक से ध्यान दिए के चाही, खास करके हाथ सफा रख, खाए वाला सामान ठीक से धो के और पानी भी सकभर धिका के पिए के चाही, बुझलू ने।
14: आईडी नेपाल के आर्थिक सहयोग और सेतो गुरास बाल विकास सेवा रूपन्देही के व्यवस्थापन में संचालित पोषण मार्फत जीवन रूपांतरण परियोजना और रूपन्देही FM द्वारा सचेतना में जारी संदेश।

0: तेरा माया नहीं मरती जा आज अपन मन संगे राई जा
1: इच्छा तो मेरे पनी धेरे थी मैं जस्ती कर रहा इस वर्ष में रखी कर रहा मेरे आपने बातें ताले विवश मरती जस्ती

घरमै खडेरी ढुर बनख भुर्र उठ्थु। तप्तु मोरलाक पानी बनख बिर्सिठ। एक घची के मिलन के बाद उ एक घाम के प्रकाश तुहिन बाप बना के उड़ा कर फिर से मन से दूर ले जा। ये प्रकृति के नियम हमा मिलन असंभव भा कारण तू बद्रे मैं धरती। हाँ वो एक दूसर से दूर रख पे करो कब्बुन और रेना मैया के एक उदाहरण हो दिल के पता। वो एक अटूट मैया के अंश हो दिल के पता।

एरनी को मन भाए फर्क फेरी भो एरनी को मन भाए फर्क फेरी भो यारसा गुम्बा पाँच औले बुटी खोदम लन्त सँग सँगै न छुटी लेकैमा चौरी गाई भेरी खरी गोठ हेरनीको मन भए फर्क फेरी भोट।

0: नमस्कार हो नमस्कार नाई, ये बुढ़ौती में बुढ़ा बुढ़ी का बात कही जाता। अका होई डॉक्टर नी बहनी, बड़की पतोहिया दुई जीव के भइल बाई, ओकरे देख रेख के जोगाड़ खोजल जात बा। आहा, ई होखे ना तरीका सास ससुर के। हाँ तब का, पेट में बच्चा रहले के बाद दुई वर्ष के जब तक नाई हो जाले, ई हजार दिन में अम्मा और बच्चा के पोषण युक्त खाना खियाए के चाही और सर सफाई के बारे में ख्याल कइल जाला, तब बच्चा और अम्मा के दोनों जनी के स्वास्थ्य ठीक रही।
1: देखा, पाथर खोजत के भगवाने मिले जैसन हो गई। और का करे पड़ाला डॉक्टराइन बहनी, तनी बता दाते।
0: ठीक बा, सुनल जाए, रेडियो में लगातार बाजत बा।
2: गोस मछली अंडा सबसे बढ़िया बा, गोस मछली अंडा सबसे बढ़िया बा,
0: फल फूल और साग पात बच्चा के खाना साथ साथ
1: सब मिल के खियावल जाए,
0: कमती में दुई साल तक महतारी के दूध न छोड़ावल जाए, बच्चा चालाक और निरोगी बनावल जाए। हाँ, हम ते बच्चा के स्वास्थ्य बनावे के संति 6 महीना पूरा भइले के बाद अम्मा के दूध के साथ सक भर ते घर के ताजा और तरकारी अंडा मछरी गोश हरियर साग पात और पियर जात के फल फूल खियावेली।
1: ओकरे साथ साथ गर्भवती मेहरारू के रोज रोज जितना खियावल जात रहल गे, उसे एक जवा बेची दिहल जाए और बच्चा के महतारी के जितना देत रहल गे रोज, उसे दुई जवा बेची देवल जाए।
0: लेकिन ये सब खियाए वाला चीज और तैयार करे के खियावे के समय में सर सफाई में ठीक से ध्यान दिए के चाही, खास करके हाथ सफा रख, खाए वाला सामान ठीक से धो के और पानी भी सक भर धिका के पिए के चाही, बुझलू ने।
1: आईडी नेपाल के आर्थिक सहयोग और सेतो गुरास बाल विकास सेवा रूपंदेही के व्यवस्थापन में संचालित पोषण मार्फत जीवन रूपांतरण परियोजना और रूपंदेही FM द्वारा सचेतना में जारी संदेश।
3: नमस्ते आए नमस्ते, होइन बुढेसकाल में के कुरा में हो बुढ़ा बुढ़ी गफी तय
4: के हुनु नर्स नानी, जेठी बुहारी दुई जुकी बाकी सासु सालको मेसो खोज्दै छौ क्या?
3: आहा, यो नि तरिका सासु ससुराको हो त। पेटमा बच्चा बसेदेखि 2 वर्षको हुन्जेलसम्मका यी हजार दिनमा आमा र बच्चालाई पोषणयुक्त खाना खुवाउने र सरसफाइका बारेमा ध्यान पुर्याउन सके आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य राम्रो बनाउन सकिन्छ।
5: लौ, ढुङ्गो खोज्दा देउतै मिले चाहिँ भयो, के गर्नुपर्छ भन्दिउँ त नानी?
3: ल, यो सुन्नु त, रेडियोमा फुकेको फुकै हुन्छ त।
6: अनि फलफुल र सागपात बच्चाको खाना साथ साथ
7: सबै मिलाई खुवाऊ,
6: कम्तीमा 2 वर्षसम्म आमाको दुध पनि नछुटाऊ, बच्चा चलाक निरोगी बनाऊ। हो, मैले बच्चालाई निरोगी र चलाक बनाउनका लागि 6 महिना पूरा भएपछि आमाको दुधको साथै अन्डा माछा मासु हरिया सागपात तथा पहेँला जातका फलफुल पनि खुवाए। तपाईँले नि
8: साथै गर्भवती महिलालाई हरेक दिन सधैँ खाइरहेको भन्दा एक पटक थप र बच्चालाई दुध खुवाइरहेकी आमालाई 2 पटक थप पोसिलो खाना खुवाऊ।
9: हो, यी सबै खानेकुरा तयार पार्ने र खुवाउने बेलामा सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ है। खास गरी हात सफा राख्ने, खानेकुरा राम्ररी धुने र पखाल्ने, अनि पानी पनि सकेसम्म उमालेको प्रयोग गर्नुपर्छ। बुझ्नु भयो नि? आईडीई नेपाल बी ग्रुपको साझेदारीमा ग्लोबल न्यूट्रिशन परियोजना तथा कृष्णसार FM द्वारा सचेतनाका लागि जारी सन्देश।
10: स्नातक तह भर्ना सम्बन्धी रामबडी बहुमुखी क्याम्पसको सूचना। रूपन्देहीको मणिग्राम स्थित रामबडी बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तह प्रथम वर्षमा शैक्षिक सत्र 2083-84 लागि अंग्रेजी र नेपाली माध्यममा भर्ना खुल्यो। कार्यक्रमहरू बीबीएस, बीएड र बीए भर्ना कार्यक्रम चलिरहेको छ। कक्षा सञ्चालन साउन अन्तिम सातादेखि। जेहेन्दार विद्यार्थीलाई नतिजाको आधारमा छात्रवृत्ति र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई छात्रवृत्तिमा थप सहुलियत दिएर पढ्न पाउने व्यवस्था गर्दै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको क्याम्पस। सम्पर्क राममणी बहुमुखी क्याम्पस तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही, फोन 071-560-226, बीबीएस भर्नाको लागि 98-570-42-624, बीए र बीएड को लागि 98-471-29-3 657.
7: स्वास्थ्यमा बटवल
11: बाल बालिकादेखि वृद्ध सम्मका स्वास्थ्यका कुरा,
7: असल अभ्यासदेखि नीतिका कुरा,
11: तपाईको जिज्ञासा अनि सम्बन्धित निकायको जवाफ।
7: बुटवल उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा रेडियो लुम्बिनी एफएम 96.8 मेगाहर्जबाट
12: हरेक हप्ताको बुधबार र सोमबार बिहान 7:30 बजेबाट
11: कार्यक्रम स्वास्थ्यमा बुटवल।
13: तिलोत्तमा नगरपालिकाको फोहर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी अत्यन्तै जरूरी सूचना। फोहर मैला संकलन तथा व्यवस्थापन कार्यलाई दिगो र वैज्ञानिक बनाई वातावरण मैत्री स्थानीय शासनको प्रमुख सूचकलाई कार्यान्वयन गर्न 2079 चैत्र 1 गतेबाट तिलोत्तमा नगरपालिकामा फोहर मैलाको स्रोतमै वर्गीकरण गरी कुहिने र नकुहिने फोहर अलग अलग रूपमा संकलन गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ। साथै अबका दिनमा आफ्नो घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, उद्योग धन्दा, कल कारखाना, होटल, रेस्टुरेन्ट, कार्यालय लगायत सम्बद्ध सबै स्थानमा कुहिने र नकुहिने फोहर राख्ने अलग अलग डस्टबिनको व्यवस्था गर्नुहुन तथा डाइपर, सेनेटरी प्याड तथा पिसाजन्य फोहरलाई छुट्टै झोलामा दिई सोही अनुरूप फोहर संकलन तथा व्यवस्थापन कार्यमा सहयोग गर्नुहुन सम्पूर्ण नगरवासीमा अनुरोध छ। तोकिए बमोजिमको कार्य नगरेमा प्रचलित कानून बमोजिम दण्डनीय हुने र मिश्रित फोहर नगरपालिकाले संकलन नगर्ने कुरा पनि सम्पूर्ण नगरवासीमा जानकारी गराइन्छ।
14: अनुरोधक तिलोत्तमा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय मडिग्राम रूपन्देही।
15: खै दाई, दुई लिची रोड अनि एउटा सुर्ती ल्याउनुहोस् न।
16: ए ल ल लिनुहोस् भाइ।
15: अनि दाई कति भयो पैसा?
16: ल हेर भाइ, के गरेको तपाईँले? तपाईँलाई थाहा छैन तिलोत्तमा नगरपालिकाले सार्वजनिक ठाउँमा बसेर चुरोट पिउन अनि सुर्तीजन्य पदार्थ खान निषेध गरेको छ नि। चुरोटका ठुटा जहाँ पायो त्यही फाल्न पनि निषेध गरेको छ। हेर्नुहोस् है भाइ, कारवाहीमा पर्नु होला नि। हेर्दा जान्ने बुझ्ने देखिनुहुन्छ, ख्याल गर्नुहोस् है भाइ। ए यसरी यो डस्टबिनमा फाल्नु पर्ने
17: हो? तिलोत्तमा नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा चुरोट पिउने, सुर्तीजन्य पदार्थ र त्यसको खोल फाल्ने गरेमा कानून अनुसार दण्ड जरिवाना हुने हुँदा पूर्ण सरसफाई अभियानमा सरिक भई सभ्य नागरिकको परिचय दिउँ।
14: अनुरोधक तिलोत्तमा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय मडिग्राम रूपन्देही।
11: तिलोत्तमा नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाको पोषण सम्बन्धी सन्देश।
18: गर्भसँगै आमा र स्वस्थ बच्चाका लागि हरेक बार खाना चारको तालिका पालना गरौं।
11: गर्भ रहेदेखि प्रोटोकल अनुसार 8 पटक गर्भ जाँच गराऊ।
18: आमाको दूध अमृत समान हुन्छ, त्यसैले बच्चा जन्मेदेखि 6 महिनासम्म आमाको दूध मात्र खिलाऊ।
11: जन्मेदेखि 15 महिनासम्मको नियमित खोप पूरा गराऊ।
18: 6 महिनापछि आमाको दूधसँगै थप आहार पनि खुवाऊ।
11: पोषण स्थिति मापनको लागि जन्मेदेखि 23 महिनासम्म हरेक महिना नियमित तौल लिऊ।
18: थप आहारासँगै समय तालिका अनुसार बाल भिटा पनि खुवाऊ।
11: प्रत्येक 6-6 महिनामा जन्मेको 6 महिनादेखि 59 महिनासम्मका बाल बालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाऊ।
14: अनुरोधक तिलोत्तमा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय मडिग्राम रूपन्देही।